तू तेरे भक्त सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करहें हर पूजा जी तब तापै जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया कर कर्म करंता। से भगत पले जन नानक जी जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जे वड़ अवरण कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करै सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई। जो तो पावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हों पाई रहाउ। सब तेरी तू सबनी तिहाया जिसनो कृपा करहें तन नामरतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाही। जी जन सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना ही सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होई तुद बिन दूजा अवरण कोई। तू कर कर वेखै जाणै सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरडै पहिले निवासा। पाणी पावक तिन्हें किया पंकज मोह पागनी चालै। हम देखा तै डूबी अले मन एक ना चित समूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सतीनी पड़िया। मूर्ख मुगधा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी शरणा। जिन तू नाही विसरिया सा महला पंजवा पही प्राप्त मानुख देहोरिया। गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै ना काम। मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाउ। जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधन जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधन जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। कव्यो बाच बेनती चौपाई पातशे दसवीं हमरी करो हाद रचा पूर्ण हो चिर की इच्छा। तब चरणन मानु रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सभय तुम कहावो आप हाथ दह मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सभय करतारा। मोर चाह निज करद करिय सवैरन को आज संघरिय। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चहूं सतुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हादह मजै उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रच्छा। राख ले हो मोराखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दसकंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाहे कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो
देव दैंत जचन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सिवकन को सिवगुन सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कटकट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिशानत चीटी ते कुंचरे अस्थूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जबद करख करा कर तारा प्रजा तर तब देह पारा जब अकरख करत हो कब हूं तो मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन सृट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सभी ते रहत निरालम जानत वेद भेद रियालम निरंका निर्वका निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जा को भेव न पावत वेदा ताको कर पाहन अनमानत महा मूड कछ भेद न जानत महादेव को कैद सदा सिव निरंकार का चिंतन पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पहन पिन तो हितेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केहवे सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पुपा अंडज जे रज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दिनी कहूं फूर राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंपावा जुगा स्वरूप स्वयं भव अवरछा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संघरो दुष्ट जिते उठुद पाता सकल मलेश करोड़ काता जे अस्तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाई है ताके काल निकट न आए हैं रक्षा हुई ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट त्रय दत काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताव तन कमो हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुर्जा छवै सकै न कोई

गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गा बनियाइया शब्द हो ता गावो हरी केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले हरना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किश है जिस देह सो पावी सदा सिफत सारा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आई वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु भेट हो जिस दियां एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द कर सपागै कर सपागै शब्द वाजे कलाजित करता हरिया पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जन कहो से नाम हर कै लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे अनद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर हा भर पूरे ब्रह्मंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर हा भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विजतन वस्तु पयो सत्संतोख विचारू अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होय उधारू हे वस्त जी ने जाई नित नित रखुर तारो तुम संसार चरणग तरी है सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई

जीमा तन मन थी वे हरे आ तरस पया मिहि राम तो होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीमा तन मन थी वे हरे आ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गदरी बाबिया के इतिहासक स्थान गुरद्वारा साहिब स्टॉकटन तो आप जी सोदर रहराज साहब नितनेम दे आप जी ने पाठ श्रवण किए हैं। सो आओ अति सत्कारयोग हजूरी रागी जथा गदरी बाबिया का इतिहासक स्थान गुरद्वारा साहब स्टॉकटन वाले भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी का जथा आप जी ने 7:30 बजे तक इलाही रब्बी गुरबाणी शब्द कीर्तन द्वारा निहाल करनगे जी। सो संगतां नूं बेनती है June 1984 पातशाही रैली धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी पातशाह जी की शहीदी दिहाड़ी नूं समर्पित सो इस स्थान तो जो प्रबंधकों वालों संगतों वालों बसों का भी प्रबंध किया गया है। सो जिन्हां संगतां ने जाना होवे ते ओ आप जी आपो अपने नाम जरूर लिखाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

जी की वृथा हुए सो गुर पहे अरदास कर कीर्तन राही सेवा कर दिया हो या फुला दिखे मां बख्शिश करनी अति सम्मान योग हेड ग्रंथी गुरुद्वारा साहिब स्टॉकटन पाई साहिब पाई गुरसेवक सिंह जी आप जी नूं कथा दे द्वारा निहाल करनगे। इसे तरह सबना ने एकाग्रता बख्शिश करनी। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।

नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। बेशुमार था गणते अतोले, ज्यों बोलावो त्यों नानक दास बोले। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णन ना सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी, चोआ चंदन मर्दन यंगा, सोतन जलै काठ कै संगा। इस तन धन की कवन बडाई, धरन परै उर वार न जाई रहाओ।

बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लीन त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नाम सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जय डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया करनाउन दयावै थाय सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चों साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडठ कीता तिन्हां प्यारियां सियारियां दी कमाई दा ध्यान

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जत श्री मोहल्ला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बसेओ तिन मात की जय हर बंजा। तिन सुन्नी देह फिरै बिन नावै ओए खप खप मोए।